कारण विष्णु बारण मम्मट पारण जात कारण विष्णु बारण मम्मट पारण जात जय जग का

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना। ए पूर्ण सिख दी निशानी, ए पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे? आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए, तन मन धन दा माण।

आप ते डिग पे पर पांड नहीं सके। गुरु अर्जन देव पातशाह ने पहला लकड़ा नू बाहर कटे, फिर रस्से नाल पाई मांझ नू जदों बाहर कटिया ते गलवकड़ी विच लै लिया। इतना घुट के प्यार कीता, इतना प्यार कीता ते गुरु पातशाह ने फिर वार भी दे दिता। मंज गुरु का गुरमंज प्यारा, मंज गुरु का बोह था जग लंघना। गुरु अर्जन देव पातशाह ने फिर भाई मंज नू मंजी बख्शिश की थी। भाई मंज जिन्होंने सतगुरु नू सेवा करके प्यार करके अपना आप गुरु तो निशावर करके पा लिया। आओ भाई आप भी जे गुरु दे सिख हां ते फिर भाई मंज वांगू किते गुरु नाल प्यार कर लईए, गुरु तो वारी हो जाइए। ताई का गुरु बख्शिश करेगा किते मन नीवा हो जावे, मत उची हो जावे, एहो जा हिरदे विच प्यार जाग पवे ते फिर भाई गुरु तो सदके गुरु भी बख्शिश करेगा, उह सिख नूं गल ला लवेगा। आओ भाई मंज दे गीत गा रहे हां। डिग पया पर पंड ना सुटी, खड़ा अडोल ओ सिर ते रखी, सतगुर आए बचा। आओ वे सतगुरां ने बांह फड़ ली, बख्शिश कर दिती। जे भाई मंज ते बख्शिश हो गई, आओ भाई ते साडे ते भी बख्शिश हो जावे कि ते आपां भी भाई मंज वांगू गुरु की सेवा विच लग जाइए ते फिर साडा लोक सुखी।

भगत रविदास जी भी कहंदे ने ये जन्म तुम्हारे देखे के तेरा है तन मन धन ए मेरे वाहिगुरु कृपा कर कोई तेरे दर्शना दी झलक इस हिरदे विच पै जाए।

हर यस हरी दा जस सुनदे आं गल्लां बातां करे जेड़ा निर्धन गरीब नूं देख के परा निकल जावे किसे गरीब नूं कोल ना बिठावे साहिब जी कहंदे ने सो तनखाइया मूल कहा संगत विच जाके जेड़ा बुरी निगाह और चित विच बुराई रखे कीर्तन सुनदे आं जेड़ा गल्लां बातां

मैं देखना है ए हरि सिंह नलुआ कौन है जिन्हें पठाना दी धरती ते आके कब्जा किया, क्योंकि पठाना नू अज तक कोई हरा नहीं सकया। ए सुन के गुल खान कहन

है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। उस सहज अवस्था नु प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, किस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख दा अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दियां पैड़ां गुरु नानक ने छड़ियां ने। तुसां वेखिया कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना, उहदे पैरां दे निशान पैंदे ने। दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेखिया होवे, इधर उधर झाकदा है, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा। पैरां दे निशान डबल हो जाण, दोहरे हो जाण। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए। जिसने तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाए। जिसने हजारां लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाए। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते इक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिलके गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बड़ी बड़ाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना है। जिहड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल की, वो कहंदे ने

गुरु की संगत, आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कार योग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवन करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए कीर्तन।

सतयुग सतगुरु वासुदेव भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास आप दसते हैं कि वाहेगुरु अखर चार अक्षरों नाल मिलके बने। पहला अक्षर जो है वा, दूसरा अक्षर हा, तीसरा गा, चौथा रा। आप कहते हैं ये चारों अक्षर चार युगों तो लिते गए। पहला अक्षर सतयुग तो सतयुग सतगुर वासुदेव वाह विष्णु नाम जपा वाह अक्षर लिता है भगवान वासुदेव तो। हा अक्षर लिता है द्वापर दे अवतार श्री कृष्ण जी तो हर कृष्ण हरि तो। पहला अक्षर वाह तो भगवान वासुदेव, दूसरा अक्षर हरि तो, तीसरा अक्षर लिता है त्रेते दे अवतार रर्रा अक्षर राम जी तो, गग्गा अक्षर लिता है गोविंद तो। आख्या चारे अक्षरां नू मिला के वाहिगुरु दा मंत्र बने। सात संगत बोलो श्री जो कल युग दे समय वाहिगुरु दा जाप करेगा ओ चारे युगां दे मंत्र दा जाप दा फल दा

तेरे तेने गुण ने तू इनी बाणी पढ़ता है शस्त्र विद्या भी सिखदा पे है गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पे है। एक गल दस संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं क्यों मांज रहे ध्यान देना ये बड़ी गुण जड़ा ना यह माधो साधु जन जो मिला।